0: बुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झलै फटाका आजी का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाउँसे झोला आनला से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेन्सिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं एक आनल

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भेटा निखौराइदा।
2: मुस्कान पिछाई घरक भेटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतमा सठारनका लागि मिनी लै जाइ पर्ना रह।
1: आब्बे ओराइदा डान्सी बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर भेजिए तू लै जा दिएस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भित्ता मात्र बिलाको बा माथिले सबद दिनु पर्यो टिका। हाँ सबद दिउ। अय्या दाई सपका डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटन छै
1: यहाँ दाई ये दाई नाजम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान बाट सपका डरलस लेव हाली।
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस करलक
3: ना त्याओ काकी तो मुस्कान निया त्या का शांत होकर बैठो ना। बेन काकी मुस्कान न स्वास कर सुटाई हर सब निकल आखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास का सुटो ता
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फांसर बना रही ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटला हाथ भर नहीं चला ना।
2: बैठा भैया सबको कटला ठाक आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटला घाव आंदर पांदर कटना दगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ हवाई पियाई थे नहीं हुई पानी थे नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कटला ठाम और लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु।
3: बिना काकी रामेशाना मोटरसाइकिल लिखाई कही था झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादा आई अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गाँव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कह कर हेरा पड़ल। हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल। हमार गांव से तो मिर्सहक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंशक उपचार कही जिना रही था हो वहां ले जाए पड़ल मुस्कान हमें।
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान होना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पड़ा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साफ है काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा इसे गले से भूख रहा सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मने यहाँ ना बताई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा दशलक मने यहाँ ना झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मने एक जिनकी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी के लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाए के लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
7: सासानो कुरामा तनाव हुने,
6: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
7: कुलटमा लाग्ने,
6: छटपटी हुने,
7: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
6: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: घर त जेनटेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकरछु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रप, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होइति रहल बा। सम्पर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: ट्राफिक कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगला दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
3: सासानो कुरामा तनाव हुने
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
3: कुलटमा लाग्ने
4: छटपटी हुने
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली
5: टीकापुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउ विद्यालय भर्ना गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राहदानी बनाउन नाबालक परिचय पत्र बनाउन बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाऊ व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो नभुल्नुहोस् है व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊ थप जानकारीका लागि टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आउने बारे को सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में
5: असार 6 गते पहिलो शनिवार
4: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
5: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिवार
4: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772
6: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
7: जब देखनो तुहिन है
6: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 9851255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टिकापुर में आज से थारू सांस्कृतिक महोत्सव हुई थी। मेला के उद्घाटन स्वरूप पश्चिम प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मंत्री मान बहादुर रावल से करना। डोटी के बद्रीकेदार गांव पालिका के डोटी के तत्कालीन अध्यक्ष चंदा उपाध्यक्ष बोहरा विरुद्ध के भ्रष्टाचार के मुद्दा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी स्वरूप पश्चिम के सभापति में इंजीनियर प्रकाश विष्ट निर्वाचित हो। चिकित्सक शिक्षा आयोग से छात्रवृत्ति अनुदान संबंधी कार्यविधि 2083 स्वीकृत। टिकापुर में आज से थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव हुई थी। थारू टेलीविजन के आयोजन में हुईलक महोत्सव के स्वरूप पश्चिम प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री मान बहादुर रावल उद्घाटन करना कार्यक्रम बा। यह विषय में जानकारी देती बाट आयोजक कुन्नू नारायण चौधरी।
1: यह आषाढ़ के 3 गते से टीकापुर थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव संचालन हुई जाय हुई। ये चाहिए पर्यटन मंत्रालय के सहयोग में थारू टेलीविजन के आयोजना में शुरुआत हुई जाय था। आज 3 गते उद्घाटन होना दिन बा हमारे पर्यटन मंत्री मान बहादुर रावल जी प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रणा कैले होती। मई टीकापुर वासी सबको जनन है दिन के 2 बजे उपस्थिति के लिए हार्दिक में अनुरोध करता हूँ। हमारी मुख्य उद्देश्य थारू के मना जीना चार पर्व संस्कृति संस्कार ये हमारे सबको जन के देखना मेरे के हमारे प्रयास करब। हमने हमारे अब एकदम अब आधुनिक हमने लोक संस्कृति में नहीं जाके हमारे पुरान संस्कृति है कचरी के जगह न प्रवर्धन कहना हो उद्देश्य रही। हमने 5 दिन के कार्यक्रम में हमने 2 बजे से संध्या के 6 बजे तक के 3-4 घंटा में देखना प्रयास करब। हमने खास कह के थारू के संस्कृति हुई लग वैसे हमने 5 दिन के अलग अलग कार्यक्रम बनैले बटी। हमने गायन के फेन बावई हुरदंगवा नाच सख्या नाच पटगोरी नाच ये सबको जत्ता फेन हमारी दफू ना बावई होरी नाच बा ये न हमारे प्रत्येक दिन में अलग अलग आई प्रदर्शनी के रूप में हमने प्रसारण करब। संग संग में हमने एक छोट में बहस के कार्यक्रम फेन भैले बटे हमारे थारू टेलीविजन हुई लग वर्षे हमने सबको वरी थारू समुदाय सबको वरी की सांस्कृतिक मेला महोत्सव हमने का करे आयोजना कई गिल बाना मेरे को एक बहस में चले थी वहां पे बुद्धि दी और एक थारू कविता महोत्सव टाइप के खन एक कार्यक्रम बाई मेरे के हमने प्रत्येक दिन के अलग अलग आइटम प्रदर्शन करब कना मैं जानकारी कराई थी।
0: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग से बद्रीकेदार गांव पालिका के डोटी के तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चंद उपाध्यक्ष समेत 8 जहां भागीरथी निर्माण सेवा के संचालक विरूद्ध के विशेष अदालत में मुद्दा दायर कर गिलबा। स्थानीय थुलीगढ़ ओ समेत कपाड़ीगढ़ के बगर क्षेत्र में ढुंगा गिट्टी तथा बालुआ उत्खनन संबंधी राजस्व के रकम संकलन नहीं करके हानि नोक्सानी समेत करलाक आरोप में मुद्दा दायर करगिल आयोजक से जनाइल भाई। आयोजक बद्रीकेदार गांव पालिका डोटी के अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चंद उपाध्यक्ष इंद्र कुमारी बोहरा विरूद्ध के 14,10,240 रूपया बराबर के बिगो कायम करती मुद्दा दायर करगिल बा। असंघ के तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक राज जयसी लेखापाल युवराज भत्ता गांव पालिका के तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देवबाओ सब इंजीनियर दान बहादुर पछेरा भागीरथी निर्माण सेवा कैलाली के संचालक पशुपति जोशी अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशव बहादुर बम विरूद्ध के 14,10,240 रूपया बराबर के बिगो कैद सजाए के मांग करती मुद्दा दायर कर गिलवा। उसके वह गांव पालिका के एक्सकावेटर भाड़ा में देना ठेक्का में राजस्व रकम संकलन नहीं करके हानि नुकसानी पुगायल अभियोग में बद्रीकेदार गांवपालिका के डोटी के तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चंदा उपाध्यक्ष इंद्र कुमारी बोहरा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक राज जैसी विरूद्ध फे मुद्दा दायर कर गिलवास का लेखापाल युवराज भट्ट गांवपालिक के इंजीनियर दान बहादुर पछेराओ भागीरथी निर्माण सेवा धनगढ़ी कैलाली के संचालक पशुपति जोशी अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशव बहादुर बम विरूद्ध के समान 46,95,600 रूपया बराबर के बिगो कैट सजाए के मांग समेत करती कालिक और समेत मुद्दा दायर करगिल आयोग के समेत प्रवक्ता सुरेश नेउपा ने जानकारी दे बाटे। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा सुदूरपश्चिम के सभापति में इंजीनियर प्रकाश विष्ट निर्वाचित फिलबाट यागेट तदार्थ समिति के सभापति फिलक विष्ट पहल अधिवेशन से नई निर्वाचित हुई के हुई कालिक रात के संपन्न हुईलक मतदान के मतगणना अनुसार समेत विष्ट 358 मत पायल बाटे कलशे वहां के प्रतिस्पर्धी जनक सिंह धामी 154 मत पायल बाटे कुल गिरलक मत के 51% कटैना उम्मीदवार विजय हुना व्यवस्था अनुसार विष्ट पहल चरण से नई निर्वाचित हुसेगल हैं। विष्ट संगे पराजित हुई धामी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 1 कंचनपुर से विजयी हुई प्रतिनिधि सभा सदस्य हो सभापति सहित 16 भूगोलो 15 खुला तथा समावेशी सदस्य चयन करना मतदान हुई लख हो। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पांच से फिर से भी सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
2: हार्दिक श्रद्धांजलि अछाम तिमिल सैन हाड़ाभुआ घर भई हाल भीमापुर बर्दिया निवासी नित्यानंद तिमिल सेना को हिजो राति करीब 12 बजे तीर भीमापुर में 86 वर्ष को उमेर में असामयिक निधन भई आज बिहान 11 बजे सत्य कर्णाली घाट राजापुर जाने पुल नजीक दाह संस्कार गरिने भएकोले सम्पूर्ण आफन्तजनहरूमा जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 9 असार 3 गते झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अश्लेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
5: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। चिकित्सक शिक्षा आयोग से छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2083 सुर्खेत जारी गर्न निर्णय गरल बा। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकै कार्यालय प्रधानमन्त्री शिवसम बालेन्द्र शाहकै अध्यक्षतामा बैठक से निर्णय कर्गिल हो। प्रधानमन्त्री शाहकै प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञा दीपा दाहालकै अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद तथा अर्थ मन्त्रालय से प्राप्ति सहमति प्राप्ति भुइला 24 घण्टा निमित्त आयोगसे कार्यविधि पास गरे विगत से लैकेने कानूनी अस्पष्टता हो समस्या दीर्घकालीन रूप में समाधान करगिलक हो। नेपाल राजपत्र में प्रकाशित कुछ नेपाल एनए संशोधन करना बनलक अध्यादेश 2083 मार्फत राष्ट्रीय चिकित्सक शिक्षा एन 2075 में दफा 54 ख समेत थपल संगे आयोग आवश्यक निर्देशिका कार्यविधि बनेना कानूनी डगरा खुलाल बटवागिल यागे विधायन एन 2081 के दफा 35 के कारण आयोग के समेत पुराण सक्कू निर्देशिका हो। कार्यविधि स्वतः खारेज समेत हुई थी कानूनी रिक्तता रलक बटागिल बा उ समस्या समाधान के लक असार एक गते अर्थ मंत्रालय ओ शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय में सकारात्मक राय सहित के सहमति प्राप्त हुईलक बटवागिल बा कार्यविधि से सार्वजनिक शिक्षण संस्था समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति स्नातक उत्तर तह में समेत डीएम एमसीएच समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध कराइल बाफत के अनुदान वितरण करेना दगरा खुलल बताइल बा। जुमला में ट्रैक्टर दुर्घटना होके एक जहान के मौत हुई बा एक जाने गंभीर घायल हुई बाटे। कर्णाली राजमार्ग अंतर्गत के तातोपानी गांव पालिका तीन लच्छु गांव लगे जुमला में समेत मंगलवार के भे एक ट 8935 नंबर के ट्रैक्टर सांझ के 6 बजे और दुर्घटना हुई हो। जुमला के डीएसपी चिरंजीवी दाहाल के अनुसार दुर्घटना में मौत हुई के टीला गांव पालिका चार के खबेन्द्र शाही के मृत्यु हुई बताया गया। बाउस्ताह का सोही ठाव के देवमनी सार्की गंभीर घायल हुई बाटे। ट्रैक्टर सड़क से करीब 200 मीटर तर गिरल प्रहरी से जनायल बा। त्रिवी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय से वितरण कर्जिना 4 वर्षे स्नातक तह अंतर्गत के बीए बीएससी और बीबीए के शैक्षिक कार्यक्रम के समेत ट्रांसक्रिप्ट लेना ऑनलाइन आवेदन देना व्यवस्था करगिल बा। 1 सावन 2083 से लेके भौतिक रूप में आवेदन नहीं लेना कार्यालय से सूचना जारी करके कलक बा। विद्यार्थीकरण के अनिवार्य रूप में ऑनलाइन मार्फत की केल समेत आवेदन देना कार्यालय से आग्रह करल बा। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के अपदस्त सभापति शेरबहादुर देउवा साउन 28 गते भित्र नेपाल लौटना जानकारी समेत सरकार करागिल बा। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग के जेठ 28 गते ईमेल मार्फत पत्रचार करती देउवा वहां के पत्नी डाक्टर आरजू राणा 2 महीना भित्र नेपाल लौटना विभाग के अनुसन्धान में सदस्यता समेत पूर्वक सहयोग समेत करना तत्परता रलक स्पष्ट पारगिल बा। विभाग के महानिर्देशक के संबोधन करके पठायल 4 पेज लम्बा ईमेल स्वास्थ्य उपचार के क्रम में रलक अवस्था अपना हुकरण देश छोड़ के भागल अनुसंधान में उपस्थित नहीं हुई कहना जैसी भाष्य सृजना करके पकड़ाव पूर्जी जारी करना तथा नेपाल प्रवेश करना कठिनाई बिना अवस्था नहीं बनाए कहके अनुरोध समेत करगिल बा। खोजखरमा फेन्से विश्राम विश्राम पाछे फेरसै विश्वन्तिरा सामुदायिक रेडियो टीका प्रएफएम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान,
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् तो?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्थे, घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनिष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनिष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
6: विश्राम पाछ फिर से स्वागत बा। असार 1 गते सिलेके भदौ मसान्त सम कोनो फे निकाय से समेत अनुमति बिना के सड़क कोरोना पैना हुई बतागिल बा। वर्षायाममा धारा धल वस्तुक बिजुली टेलीफोन लगायत के प्रायोजन के लाग सड़क कोर के तत्काल मरमत करके यथा स्थिति में समेत लान नहीं सकना हो। सड़क थप बिग्न न कहती सड़क विभाग से ई अवधि में सड़क कोर नई पैना रोक लगा सकल बा। भदौ मसान्त में कौनफे सड़क डिविजन कार्यालय से सड़क कोर न अनुमति समेत नई पैना विभाग से सूचित कर सकल बा। विभाग के समेत अनुमति बिना सड़क कोरल पायल में सड़क ऐन 2031 अनुसार कड़ा कार्रवाई हुना समेत सूचना में उल्लेख करल बा। अब सिर्फ परीक्षण नहीं करके वैदेशिक रोजगार के लाख सऊदी अरब जाय नहीं पैना हुई बताया गया बा। बुधवार से सिर्फ परीक्षण पास नहीं कर लक श्रमिक हुकरा सऊदी अरब जाय नहीं पैना कहल बा। सऊदी से नेपाली श्रमिक हुकरान के लाख सिर्फ प्रमाणीकरण स्किल सर्टिफिकेशन अनिवार्य समेत बना गिल बा। लौवा व्यवस्था अनुसार बुधवार से लेके सिप परीक्षण पास नहीं करके श्रमिक उकरण सऊदी अरब के लाख श्रम स्वीकृति समेत पैना नहीं हो। सऊदी सरकार के श्रम भिसा प्राप्त करना सिप प्रमाणीकरण के कार्यक्रम लागू करना जना सकल बा। 1,00,000 श्रमिक से परीक्षण निःशुल्क समेत परीक्षा शुल्क 50 अमेरिकी डॉलरों, पूर्व सिकाई मान्यता शुल्क 50 अमेरिकी डॉलर करके 100 अमेरिकी डॉलर करीब 15,000 रूपया तिरे पर्ना कहलवा कल से सिप प्रमाणीकरण के लाख श्रमिक उकरण के स्किल वेरिफिकेशन समेत प्रोग्राम ऑनलाइन मार्फत समेत आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करे पर्ना बताइल बा। ओ अर्जेन्टिना से जारी विश्वकप में शानदार शुरूआत करल बा। बुधवार के बिहान के ओराइल खेल में अर्जेन्टिना से कप्तान लियोन मेसी के हैट्रिक में अल्जेरिया है 3-0 से पराजित करती विजय शुरूआत कर लखो। मेसी से खेलल में 76 मिनट में समेत गोल करल रह। वहां विश्वकप के करियर में पहल हैट्रिक हो। हैट्रिक संगे वहां विश्वकप में सर्वाधिक 16 गोल करुआ। जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के समेत कीर्तिमान बराबरीकरणबाट साथै मेस्सी छोट विश्वकप खेल्दा खेलाड़ी के कीर्तिमान फे समेत बनाएलबाटै जेटसँगै अर्जेन्टिना समूह जेमा तीन अंक जोड़ल बाकी अर्जेन्टिना आप जून 22 अस्ट्रेलिया हो जून 28 जोर्डन संगे खेल्न बा अल्जेरिया से समेत भर जून 23 जोर्डन हो सकर जून 28 अस्ट्रेलिया संगे प्रतिस्पर्धा गर्न कहलबा। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जेना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुरमा आज से थारू सांस्कृतिक मेला महोत्सव फुटी मेला के उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मंत्री मान बहादुर रावल से करना। डोटी के बद्रीकेदार गांव पालिका डोटी के तत्कालीन अध्यक्ष चंदा उपाध्यक्ष बोहरा विरूद्ध के भ्रष्टाचार के मुद्दा। सुदूरपश्चिममा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापतिमा इंजीनियर प्रकाश विष्ट निर्वाचित हो। चिकित्सक शिक्षा आयोग से छात्रवृत्ति अनुदान संबंधी कार्यविधि 2083 स्वीकृत। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह खबर सुन सकबी अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाम सुनते विराम राम।
7: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा असार 6 गते पहिलो शनिबार आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
8: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
7: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
10: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
11: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटू कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
10: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कर आनसे के कतरा सुगर बना कर अनला बाटी
11: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाई कहू सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार।
10: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए और ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846239261।
12: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्सगेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि व्हील देखले से हिंसा विरुद्ध

0: नहीं कमिल सर।
1: आओ आओ, तू पायलट से आई ना हमारा डील कर दो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
0: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफर रखना, डर लग के घूमत रहते हो, जैसे चेयर से लगने तो हलचल नहीं करना। मोर सपो का इकट्ठा पहनो तो पायलट जाकेंगे।
1: मोर सपो है ना, चलेना तो नहीं चलेगा ना?
0: नहीं चलेना सर।
1: विद्यार्थी भैया बापू पूरा रहते कह रो मोर सपो देखो कर से वही ना चलाए नहीं बिठा तब मोला से फिर वाकर में रहल बीस असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल और देख पना सप्पा है ना नंग तो हाँ साले पकड़ा नहीं भी
0: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
1: सप्पा मुआल और देख पना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत पकवा मुला कुछ देर पास असम थे सप्पा दस सकत वह और से मुआल अवस्था में थे सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना मल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से भी था
2: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वहा मार गई सप्पो है ना पकड़ना वह खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बास संफी सपवा दस से था संभव हुई सम सपो फोटो खींची वह पहचान कला विज्ञान से संपर्क करी
3: सर्पदंग से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंग से उपचार केन्द्र कहाँ बाकी था पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: हार्दिक श्रद्धांजलि अछाम तिमिल सैन हाडाभुवा घर भई हाल भीमापुर बर्दिया निवासी नित्यानन्द तिमिल सेनाको हिजो राति करिब 12 बजेतिर भीमापुरमा 86 वर्षको उमेरमा असामयिक निधन भई आज बिहान 11 बजे सती कर्णाली घाट राजापुर जाने पुल नजिकै दाह संस्कार गरिने भएकोले सम्पूर्ण आफन्तजनहरूमा जानकारी गराइन्छ।
6: सीमै देखिनु भो यता फर्कनु सा।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं छिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 98046 77417।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: चेली हेदी धै बालाई लोटरी पढ्यो भने क्या बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो
1: धै धै बा तुमले लोटरी भर्राई थ्या ब
2: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो ब
1: कभै नभर्या लोटरी कसरी पढन्छ ब बा ईसा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन
3: सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ
1: सिद्धार्थ बैंक पठै जनहितमी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उक संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59
6: कार्यक्रम छोट मीट साता के बुधवार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
7: जब देखनो तो हिन है
6: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-560-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैकी बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ हेर इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर हुई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
3: भाईलाई थाई रहने छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लगने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
3: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
4: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनी को 2 वर्ष को ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पो में चाहिने सामान सुपथ मूल्य में थोक तथा फुटकर रूप में बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबी में लगने संपूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन्छ संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
3: संपर्क नंबर 0915604670 र मोबाइल नंबर 9848528

0: का पिए रही था कभी पेंसिले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सिकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्त बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
3: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा
4: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ एमडीबीएस एमडी इन्टरनल मेडिसिन डीएम कार्डियोलोजी
5: डाक्टर आउने दिन असार 7 गते आइतबार समय बिहान 10 बजेदेखि
4: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ
5: उपचार हुने समस्याहरू
4: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखै वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हात खुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
5: साथै मुटुको इको रगत जाँच र इसीजी पनि गरिन्छ थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 9826614306 र 9846739785 सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आज तिमी मेरे वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी?
4: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
3: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
4: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
3: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
4: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
5: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टीकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नया नया डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुमका, छड़के तिलहरी, बाला, चूरा, चंद्रमा, जंतर, चंद्रहार, इंडियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना राशन का गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदी का सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगल साइन को शाखा टीकापुर को सिद्धार्थ चोक में रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नंबर 98688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगल साइन का लागि रूप सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नंबर 98-24-67-28-25।

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय थे बा पखारिक मुहक रुकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसक खुशी सपोथे आई सकता
1: ओहो हो निका सबका समझनो करक अंदर पाद सफास से बाहर से कत्ता का पहिल बा काट पर ना रह
0: हां असि करी हेर बुढ़िया ओ सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना ओ तेला रोटी पका का बासी खाई दूसरा असल परियार मने मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी हुई
1: हुई था हो गुरुवा असि डाला मत यान घास पोहर धफास भी था मा साफ नुख बैठल रह सकता ना
0: वह सेट कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू ओ मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल झन झन घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुसु के पैठनी सेकना में चपटदार दूसरा घर आंजर पांजर फसफार सफा हुई से साफ पहना का उसका कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ज्ञान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाकक समय में सुखा ठामा बैठा मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में ओकरा बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साफ मानव बस्ती लघ आई सक
4: विश्वास लगना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघक उपचार केन्द्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिखे सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी

0: रगैया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगान दीदी कटरा से गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कापी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रगैया झोला उद्योग में रगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैकी बा। नाच गिब्बास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3, 4, 5, 6 और 7 गते।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर।

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
1: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो, तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
0: ससानो कुरामा तनाव हुने,
1: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
0: कुलटमा लाग्ने,
1: छटपटी हुने,
0: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
1: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते, 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नु। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
2: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वनन्दे भोज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर बेहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: बुका पिए रही था कबू पेंसिल ले रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखा समय थे बा पखारिक मुहक रूप कर बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुटी सपोथे आई सकता
1: ओहो हो निका सबको समझनो घर खाने पाले जफा से बाहर से कच्चा का पहिल बा काट पर ना रह
0: हां असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना वो तेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मने मिलकर सर सफाई कर भी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर भी तनी भी
1: हुई था हो बुढ़वा असी जाला मत ध्यान घास पोहर घसवास भी था मा साफ नुख बैठल रह सकता ना
0: वो हो से तक कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर से सांप मुस्कुसु के पैठनी सेकना में चबदार दूसरा घर आंजर पांजर फसफार वो सफा हुई से साफ ऐना का उत्साह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बरखा छाटक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना पिला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लघ आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लघ उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिखे सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने
6: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
7: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
6: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
6: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
7: ईसीजी सेवा
6: डिजिटल एक्सरे सेवा
7: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
6: फोन नम्बर 9894827359 र 9848423059 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै

भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करे, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करे। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुस्। यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल, घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: सामुदायिक रेडियो टी कापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org महलाभ समरपात्र और नेपाली पात्र मफे सुन्दी बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में कृषि संघ केरा खेती संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम। कंचनपुर प्रहरी के जेठ महीनागे प्रगति विवरण लागू औसत मुद्दा में 36 जना पकड़ाउ। ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवा विस्तार के लाख 1600 साइट निर्माण के तैयारी। ओ मेसी की हैट्रिक में अर्जेन्टीना की विजयी शुरूआत। अल्जेरिया के ऊपर 3-0 के पराजित। टीकापुर में कृषि संघ केरा खेती संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम हुआ। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संघ का सर्व वार्षिक उत्सव के अवसर में यह अंतरक्रिया कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थी सुभद्रा उपाध्याय, सुस्मिता सिजुवाल, प्रकाश साउत, समीक्षा केसी लोस जोशी लगायत जिज्ञासा धरला रहित और संघ कृषक कमल रावल, अनिल कुमार के नगरपालिक के कृषि कृषक के समस्या समाधान के लाख नगरपालिक पहल करना बात धरला रही। अंतरक्रिया कार्यक्रम में उठलक प्रश्न के जवाब देती टिश्यू कल्चर मसे बेरना उत्पादन ते केन्द्र धामी पहला केरा खेती करना कृषक के समस्या भगल से फिर पाचक समय केरा खेती में आकर्षक भला गोटिलो बाट वहां के कृषक के बजार कृषक के नियंत्रण से बाहर अलग बोटेटी आपन कल्चर कटी सकलक बिरुआ बिक्री वितरण कलक जानकारी कर रही। कृषक कालू हमाल केरा खेती और खेती से सिंचाई कम सिंचाई कल से फिर उत्पादन करना सीखना ढिके नुकसान कल से फिर रिकवर समय नहीं लगना कोल्ड स्टोर नहीं चाहलक 12 महीना आमदनी होना मार्केटिंग कर पर्ना जानकारी दिल बाट केरा व्यवसाय संघ कैलाली के अध्यक्ष दीपेन्द्र थारू केरा फरिना बाट के सतर्कता नई अपना के बजारीकरण के चुनौती रलक बोटिलो बाट वहां के केरा खेती केला प्रविधिके करना यांत्रिकीकरण करना कति आधुनिकरण कति गैलपास उत्पादन हुईलग जटिल रलग बोटिलो बाट कृषि विकास बैंक टीकापुर के प्रबंधक दीपेन्द्र रावल व्यावसायिक परियोजना में से हुई फायदा हो धितो मूल्यांकन के आधार में कृषि में लगानी करना कलग जानकारी कर रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन टीकापुर के प्राविधिक सहायक सबना कुंवर विस्तारी समकिन्दी तालीम गोष्ठी सम्बन्धी तालीम गोष्ठी संचालन करती रह जानकारी करले बाटी। नगरपालिका के संबंधी ऐलक प्रश्न के जवाब देती कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नगारजी आगामी दिन में कृषि के हित में फायदा होने खाले कार्यक्रम के लाग बजेट नियोजन करना प्रतिबद्धता व्यक्त करलबाट कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय प्रधानाध्यापक रमेश सुप्रीति के कार्यक्रम ऐलक सहभागी हुकन धन्यवाद आगामी दिन में फिर यहां खाले कार्यक्रम निरंतरता दिन बोटिलो बाट कार्यक्रम संचालन प्रदीप सावत कर रहे। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जेठ महीना के आपन संस्थागत प्रगति विवरण सार्वजनिक करलबा। सार्वजनिक विवरण के अनुसार प्रहरी यह महीना में लागू औसत ओसार प्रसार नियंत्रण और सीमावर्ती क्षेत्र में हुई भंसार छली नियंत्रण में उल्लेखीय सफलता हासिल करलबा। प्रहरी जेठ महीना में लागू औसत संबंधी 19 मुद्दा दर्ता करके अनुसंधान नाग बढ़िलो बाट यह क्रम में 36 जना पुरूष अभियुक्त पकड़ाऊ पर्ल बाट प्रहरी के वहां हुकन संघ 27.75 ग्राम खैरो हिरोन ब्राउन सुगर और 5.90 ग्राम तरेस बरामद कर यह महीना में गांजा बरामद के संख्या फिर शून्य रहा स्थल का अंदाजी मूल्य 24,600 बराबर के अवैध मदिरा बरामद कर। खोज खबर में एक विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुन्त्र भी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइती। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्रा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: विश्राम पाछा फ्रेसे स्वागत बा। किसान बहुउद्देशीय सहकारी संस्था श्रीमानकी मृत्यु हुलक आफन्त सदस्य महिला ऋण बिनाही कर्ती तिर्लक रकम फिर्ता हो क्रिया खर्च उपलब्ध गर्नबाट सहकारी टिकापुर नगरपालिका आठके तारा दमैहा 8,43,5,890 रूपियाँ की चेक हस्तान्तरण गर्नबाट ताराहा 5,00,000 ऋण बिनाही 3,30,030 ऋण फिर्ता 8,000 क्रिया खर्च 5,890 रूपियाँ बीमा प्रिमियम फिर्ता गर्नबाट सहकारीकै सदस्य हुलक ऋण देलक महिलाकी मृत्यु हुलक ऋणकी 140% पैनाओ श्रीमानकी मृत्यु हुलक 100% ऋण मिनाही हुनाओ क्रिया खर्च नै पैनाकैकी व्यवस्था सहकारीकी महिला सदस्य हो उहाँ हुकनकै परिवार दुःखकै बेला राहत मिल्ला कल्लबाट तारा दमाई ऋण समहसके तलापमा पर्लक ऋण तिर नै पर्लक कि तिर्लक पैसा फिर्ता आइना कहिले पाछ संस्थाप्रति आभारी हुलक बोटिलो बाटी। कैलाली स्थित किसान बहुउद्देशीय सहकारी संस्था आफ्न सदस्य कलाक बनिलक सदस्य सुरक्षा कोष बीमा सेसिन सुविधा देना कलबाट सहकारी केसिन कोषमा वार्षिक नाफाके 10% कर्मचारी हुनके हरेक वर्ष 2 दिन बराबरके तलब जम्मा गर्न कलबाट बिना धितो ऋण पैना महिना प्रतिलाख 850 रूपियाँ कि बीमा गर्न पलटकै टिकापुर नगरपालिका आठके वडा अध्यक्ष दीर्घ बहादुर ठकुल्ला आर्थिक स्थिति कमजोर हुलक सदस्य महिला ऋण मिनाहीको फिर्ता भारी राहत मिलक बोटिलोबाट सहकारीके हालसम्म 34 करोड़ रूपियाँ सुविधामा खर्च कर सकलक बोटिलोबाट सहकारीके नारायणपुर शाखाके प्रमुख नवराज देवकोटा ऋणके मृत्यु हिल्पा छ उहाँ लेलक ऋण कसिक असुन्ना होके चिन्ता लग्ना विधुवा तुरा हुकुन्ला आखर ऋण मग्ना जैनपा छ मानवीय व्यवहार जसिन्दाके बीमा हो सदस्य सुरक्षण कोषको व्यवस्था हुल्पा छ ऋण तिर नै पर्न उल्टा पैसा पैना हुलक मानवीय व्यवहार हुलक जसिन लग्न बुटिलोबाट सहकारीकी महिला समूहमा बचत बिना धितो ऋणके कारोबार गर्न ऋण मिनाही हो सुविधा देन कल्लबाट समूहमा नै बैठना हो धितो धर्के ऋण लेन हो कैके सुविधा नै पाल भिट। बागमुङस्थित मध्य पहाड़ी लोकमार्गमा बुधबार बोलेरो जीप ओ 40 जीप एकावसमा थोक्लक 5 जना घाइते हुनबाट बागलुङ बजारमा से मूर्ति बोआङ तर्फ जैती कलक लु 1-2739 नम्बरके 40 जीप ओ विपरीत मसे दिशा मसे यति कलक लु 2-6-2-0-5 नम्बरके बोलेरो जीप मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिका 3 राटामाटा मसे एकावसमा ठोकिल दुर्घटनाबारे जानकारी दिती जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङकै सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर ततुवारी बुटीबाङ तर्फ जैती कलक जीपमा सवार 14 जना मध्ये 5 जना घाइते हुलक बोटिलोबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक ततुवारीकी अनुसार घाइते हुनामा निसी खोलवा गाउँपालिका 4 के 16 वर्षीय रेणु विक 17 वर्षीय लक्ष्मी सुनार ओह गाउँपालिकाकी 4 चार के 17 वर्षीय दिलमाया रसाइली, निशी खोला के गाउँपालिका 3 के 15 वर्षीय हिमाली शाही ठकुरी और 17 वर्षीय लक्ष्मी विकबाट खाइती हुकुनके धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागुङमा उपचार हुटी रहवा खाइती हुकुनकी शिश शरीर के ढेरसिन भाग सहित जिउँद आँखी हाटो मुहमा चोट लगलग प्रहरी जनेरवा। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमिलसेना देशभर दूरसंचार सेवा के गुणस्तर पहुँच विस्तार के लाग थप करीब 1600 नया टेलीफोन टावर तथा सम्बन्धी पूर्वाधार साइट निर्माण के प्रक्रिया घबोडिलो बोटिलोबाट प्रतिनिधि सभा के आजके बैठक में सांसद थुक्रा उठिलक प्रश्न के जवाब दिना हुई। संचार मंत्री डाक्टर तिमिलसेना ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र में दूरसंचार और इंटरनेट सेवा के गुणस्तर कमजोर लग गुनासो धेर ऐना करलक समाग मंत्रालय गंभीरतापूर्वक के लाग बुटिलोबाट उहाँके दूरसंचार सेवाकी विस्तार तथा स्तरोन्नति के लाग आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकम मार्फत मन्त्रालयको बजेट सेधेर बढ़ी रकम लगाडी हुना जानकारी दिलबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार के लाग नेपाल टेलिकम क्लिक आगामी आर्थिक वर्षमा रु 6 अर्ब सेधेर बढ़ी लगानी गर्न तयारी कलक उहाँके कहाइरहल्बा। संचार मन्त्री डाक्टर तिमिलसेना के अनुसार हाल देशभर 4829 साइट संचारमा रहलबाट ओमण्डे कोशी प्रदेशमा 760 मध्य 568 बागमती 1277 गण्डकीमा 5099 रूम्बिनीमा 8019 कर्णालीमा 305 सुदूरपश्चिममा 501 साइट सञ्चालन रहलबाट उहाँके सेवा पहुँचो गुणस्तरके आधारमा थप पूर्वाधार आवश्यक रहलक। अध्ययन देखाइटी बोटेटी कोशीमा 257 मधेसमा 228 बागमतीमा 399 गण्डकीमा 76 लुम्बिनीमा 200 कर्णालीमा 121 सुदूरपश्चिममा 172 करके देशभर 1443 नयाँ साइटकी आवश्यकता पहिचानको लग जानकारी दिलबाट नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण नेपाल टेलिकमके मूल्यांकन के अनुसार यी अतिरिक्त साइट सञ्चालन आइपा छ। देशभर दूरसंचार सेवा के गुणस्तर और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुना विश्वास व्यक्त करते मंत्री डाक्टर तिमिलसेना आवश्यकता से धेर बढ़ी पूर्वाधार निर्माण लक्ष्य करके करीब 1660 के लाख खरीद प्रक्रिया का बढ़ना लगलग बोटिलो दूरसंचार उपकरण के अधिकांश सामग्री विदेश में से खरीद कर पड़ना हुआ कुछ समय लगना हुआ से फिर मंत्रालय की संबंधित सेवा प्रदायक संस्थाओं संग नियमित समन्वय करके समय सीमा भीतर काम संपन्न करना निर्देशन दिलक वहां जानकारी दिलबाट। संचार मंत्री डाक्टर तिमिलसेना दूरसंचार सेवा संबंधी जनगुनासो प्रति सरकार संवेदनशील उल्लेख करते नागरिक गुणस्तरीय संचार सेवा प्राप्त करना सुनिश्चितता के लाग तीव्र गति में काम हुटी रह समेत बोटिलबाट। खुश खबरमा फेर्से विश्राम विश्राम पाछ फेर्से विश्वन त्रेवी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफेम।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डी फोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
10: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: डाक्टर आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
4: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
9: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा आप खेल खबर। अर्जेन्टिना जारी विश्वकपमा शानदार शुरूआत क्लबबाट बुधबार बिहानकै सम्पन्न खेलमा अर्जेन्टिना कप्तान लियोनल मेस्सीकी ह्याट्रिकमा अल्जेरिया 3-0 पराजित गर्दै विजयी शुरूआत क्लबबाट मेस्सीकै खेलकै 76 मिनटमा गोल कलरही हे उहाँकी विश्वकप करियरकै पहिलो ह्याट्रिक बा। ह्याट्रिकसँग उहाँकी विश्वकपमा सर्वाधिक 16 गोल गर्न जर्मनीकै मिरोला इस्लाप क्लोजकै कीर्तिमान बराबरी कलरबाट सँग मेस्सीकै 6 विश्वकप खेल्न खेलाड़ीकै कीर्तिमान फेबोनिलोबाट जितसँग अर्जेन्टिनाकी समूह जेमा 3 अङ्क जोड्लोबाट अर्जेन्टिनाकी अब जून 22 अस्ट्रिया हो जून 28 जोर्डनसँग खेल्न भुलबाट अर्जेरिया फे जून 23 जोर्डन हो जून 28 अस्ट्रियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न भुलबाट। यही समाचार संघ खोज खबर बारे जनाइसे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। टिकापुरमा कृषक संघ केरा खेती सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। कञ्चनपुर प्रहरीकी जेठ महिनामा प्रगति विवरण। लागू औषध मुद्दामा 36 पक्राउ। ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा विस्तारकै लागि 1600 मानकै तयारी। ओमिस्टिकी ह्याट्रिक रूमा अर्जेन्टिनाकी विजय शुरूआत। अल्जेरिया के ऊपर 3-0 के पराजित। टिटाबकला खोज खबर तथा प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद। टिटाबकला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक 6 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी। सामुदायिक रेडियो टीका पूरा सुनती रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6।

0: ये तेरी सपुआ मादे मादे ते काटी ना अच्छा चावा सांपन कुछ नहीं कराये सम सांप कुछ नहीं करता ले वो अपने चल गया था कुछ कराये था वो सब कुछ सांप बिखाह थे नहीं रहता बिखाह हो कि नहीं हो का किसी का चिंता ना दाई ले नेपाल में पाजी ना बिखाह सांपन का विषय मसून
1: एक थोड़ा ठह गरे जा जोन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर पैठ सेक था ये कटला से निबटाई फिर से आकर तरह कटला पास है दे भाग जो निचलना के था सास ठहर जो निशेक ना में से लक्वा हुई सेक था और रठा डोम उन बड़ा रिशाह मेरी रठा इनकर फाट फुले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय बिहान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्वा हुई सेक था वो और रठा कई जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उस समय का हमारे देश का तरह एक सबको भूभाग में पा देना बगो अपने न फुनकार ना साधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक था
2: बर्खा छाँ को अनाज बिक्री ना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना झूर मिला कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिबेर सापन का दसाई का घटना झूर मिला कर लग पा जाए
3: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी ले सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसंधान केन्द्र संघ को सहकार्यमा रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाण्डौ मिडटाउन का साथ साथ ही विश्वभर का रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरू द्वारा जनहित का लागि प्रस्तुत सन्देश
6: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
7: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
6: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
7: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
6: अब त म ढुक्क
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
7: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: जीवन बनायो कसैले। दाङका स्रष्टा गजलकार हरिप्रसाद पौडेल स्वर्ण शिखाज्यूलाई मुत्कारिब मुसमन सालिमबहरमा रहेको मिठो गजलका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेका छौं। प्राविधिक मित्र रत्नजीले समयले नेटो काटिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म मलाई सुनेर साथ दिइरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका गजलकारज्यूहरू कुपण्डोल ललितपुरका स्रष्टा गजलकार सुधीर थापा, दार्जीलिङ भारतका स्रष्टा गजलकार बीके मुखिया बाङदे, काठमाण्डौका स्रष्टा गजलकार छत्रपति दाहाल, दाङका स्रष्टा गजलकार कपिल किशोर घिमिरे, सरपाङ भूटानका स्रष्टा गजलकार अच्युत घिमिरे, पोखरा 26 कास्कीका स्रष्टा गजलकार ऋषिकेश बराल, हाल काठमाण्डुमा कार्यरत बैतडीकी स्रष्टा गजलकार विमला चन्द सानु, काठमाण्डुका स्रष्टा गजलकार अनुराग अरूण र दाङका स्रष्टा गजलकार हरिप्रसाद पौडेल स्वर्ण शिखाज्यूहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरका यस्तै मर्मस्पर्शी भावका गजलहरू मधुवनमा प्रस्तुत गर्ने अवसर निरन्तर प्राप्त भइरहनेछ भन्ने कामनासहित आजको मधुवनबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता अलखिन्द लोहार र मेरो आवाजलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउन प्रविधिमा साथ दिइरहनुहुने प्राविधिक मित्र रत्नाजीलाई पनि विदा दिनुहोस्। सुन्दै रहनुहोला सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
2: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाएं।
3: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: आई हो बड्डो, घर कहिया सिज जइबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल।
6: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान वर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढो हो न कबू कहुरा घुम जाए त था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रैलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848541436।
9: के तपाईलाई थाहा भयो
10: सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा 100 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ।
9: कर्मचारीले धूम्रपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरहमानी विभागीय कारवाही हुन्छ।
10: सार्वजनिक संस्था वा स्थलमा सञ्चालकले धूम्रपान गर्न नपाइने सूचना टाँस गर्नुपर्दछ।
9: सुर्ती प्रवर्धन हुने गरी कुनै संचार माध्यममा विज्ञापन गरेमा वा प्रायोजन गरेमा 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
10: सुर्तीजन्य पदार्थहरू 18 वर्ष नपुगेकालाई, गर्भवतीलाई, शैक्षिक संस्थाको 100 मिटर वरिपरि बेचेमा, फुटकर बिक्री गरेमा, सजाएर राखेमा 10,000 सम्म जरिवाना हुन्छ।
9: धूम्रपानले मुटु र फोक्सोलाई बिगार्छ, क्यान्सर हुन सक्छ।
10: चुरोटको धुवा वरिपरिका मानिसको फोक्सोमा प्रवेश गरी धूम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई जस्तै रोग देखिन सक्छ। धूम्रपान त्याग्न नसके स्वास्थ्य कर्मीको सहयोग लिन सकिन्छ।
11: सुर्तीजन्य पदार्थ होइन, स्वास्थ्य रोजौं।
12: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
13: बीतल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्भे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पॉलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पॉलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
14: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
15: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 98-49-85-18-08।
16: हरेक भ्रूणले जीवितै जन्म नपाउने जन्मिसकेपछि अभिभावकबाट संरक्षण पाउने आफ्नो सर्वाङ्गीण विकास गर्न पाउने र परिवारका हरेक कार्यमा सहभागी हुन पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। हरेक बुबा आमा अभिभावक शिक्षक र वयस्कहरू यस बारेमा सचेत रहौं।
0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी जबसम्म हाम्रे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी भ्रष्टाचार करुया मनै नखुल्के विरोध गरी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करकलाक सबको जाने सहयोग गरी
2: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झनै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा फि ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनले से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिखबे का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: ठ कहाँ से लनबो ओ त कहाँ टीकापुर म रलक रटगे या झोला उडोक म से वहाँ झिंगलान दिदी कटास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै थी ना कबू पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुईन कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: टीकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउनुहुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू: वडा नम्बर 5 असार 4 गते मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 4 असार 5 गते अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 6 गते एकतानगर कार्य समितिको भवन, वडा नम्बर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
1: रजनी, वहाँ 62 नम्बर लक्ष्य बा, देखाओ त, हत्ता देखाओ त।
2: मुर्गिन दाना देना जाला म काकर लक्ष्य खा देती अपन।
1: एक तो तपा बाका मुर्गिन खा रखे, लक्ष्य से डिगले से बक्सा की, आनो हाली छत्ता।
2: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी, नहीं तो अमन दस श्याकर। बिहान घर भित्र आए लागी कल से भगाई दी
1: पारक भित्र पेट का मुर्गी मुआदी वी कहीं का भगाई खोज लखो का
2: आरम कीड़ा फटिंदा मुँह सांप सिर निचा कर कहीं फलाम को जारी लगा बात तब पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बिहन अपना न दाखी डूर रीना
1: हो बिना था क्या करना हो सब देखती की डर नागर लगना रही था देव तब तो अपन घूम का बारी वो कर गई था
2: हमारे चल सापन से डरे ना नहीं होगी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई रहती पति रक्षा करत लाग वा आपन बचाव करत लाग साप दसना कर था
3: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देखा डरे था नी चला कर दूर रह से साप नी दस्त पर मुखर खेना खाजा बाहर निस्कर देना मत घास काट बेल छाल बेल ड्यांग बेल छू बेल से मने मही मारक लाग बाटा कना सबस का पति रक्षा करना क्रम में साप दस लाग रह मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रह
4: सर्पदंश सम्बन्धी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त गर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा ह्याएर सेती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

महाराज परीक्षित सुखदेव ले बताउनु भो यही भनेर भजन गर्नुस् है त उदाउँदा ब्रह्माजी को रूप माझमा विष्णु शिव अस्ताउँदा विष्णु भयो जानियो यी वसुन्जेल मात्रै हो कि अब यो विश्व ब्रह्माण्ड सारा सम्पूर्ण आफ्नो शरीरमै हो महाराज शिर भनेको स्वर्ग मर्ति भनेको पात नाभि पाताल भनेको पाइताल हो सूर्य र चन्द्रमा भनेको आँखा है त यो आँखा बन्द भयो भने बाह्रवटा सूर्य उदय उज्यालो हुन्छ र नाक भनेको 49 वायु 10 दिशा भनेको कान लाज भनेको चाहिँ तल्लो ओठ लोभ भनेको उपल्लो ओठले लाज राख्यो भने तल्लो ओठ सेप्जनले हो कि होइन वाचम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्नुहुन्थ्यो दिव्य स्तवीर वेदी साङ्गे पदाक्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्याना बस्ती तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तम न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे भ्रमृत मन्दर मन्दर रगी ग्रमे कण्डु जना निद्रा लोकमट कृतरे भगवतम श्वाना नीलम पान्तु ये तो संस्कार कला नुभरत नमलात यात मतंद्रितम जन निधिरणा देवी विश्रमेति पुराण संख्या समूह माध्यम से प्रयोजन दानम दान से महात्म प्रदेश निबोधत ब्रह्म दश सहस्र पद्म पंच षटा नीच श्री वैष्णव त्रय विंशति चतुर विंशति शैवगम दशाष्टौ श्रीमद भागवत नारद पंच विंशति मार्कण्डे नव भन्न दश पञ्च चतुर्शतां चतुर्दश भव्य सुन्दरता पञ्चशतानि दशाटो ब्रह्म वैवर्त लिङ्गम एकादश भवतु चतुर्विंशति वराय गच्छति सहस्रगम कन्नम शत तदाशेक वामन दश कृतिताम कुर्म शब्दशाख्यात मतं तत् चतुर्दश व्यकुर विंशति सौवर्ण ब्राह्मण शत सेवतु म एवं पुराण सन्द चतुर्दश उदारित अष्टादश श्रीमद भागवत मीशति हेम अव्यम श्रीमद भागवत मीशति हेम श्रीमद भागवत मिशति हे इदं भागवत नाम ब्राह्मण प्रणामी पंकज हे तिदाय भवति करुणाय प्रकाशित माध्यम अवसाने शुभ वैराग्य ख्यान समेत हरलीला कथा प्रात मृत नंद सत्सुरम सर्वेदांत सारम दर्शन लक्षणम अस देवते तरणित कविल प्रयोजने ब्रह्मपद प्रणमासी यम सीमा समन विदा भागवत से हंति प्रमाम गति महाराज देवदानी प्राणानी सदाम गणे यावद भागवत नाम श्रुतिमृत सागरम सर्ववेदांत सारम श्रवत श्रीमद भागवत मिशति कस्मयन विवासित मतलब ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण नारदय मने कृष्ण तद्रूपेण युगुंद्राय तदनाथ हृदय करुण दशोशुद विश्वकमृतम सत्यम परम धीमहि नमस्ते भगवते वासुदेवाय साक्षणे इदं कृपया कस्मै वासुदेव मम सजुन्द्र नमस्ते सुखाय ब्रह्मरूपणे संसार सर्वे द्रष्टव्य मनुष्य मम चतु भवेदासि पादस्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथ समवेतं प्रभो नाम संकीर्तन विशेषर पाप प्रणाशन प्रणम दुःख समनं स्तं नमामि हरिं परिं हरि ओं तत्सत् नाम संकीर्तन विशेषर पाप प्रणाशन प्रणम दुःख समनं स्तं नमामि हरिं परिं हरि ओं तत्सत् श्रीमद् भागवते महापुराणे अठादश सहस्र स्पर्श संहिताय वैयासिक द्वादश स्कन्धे पुराण सांख्यादिमा नाम त्रयोदशो विस्ताम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।